0: स्वर्गीय सुदर्शन जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार, नाटककार और लेखक थे। सुदर्शन जी का जन्म 9 सितंबर 1896 को सियालकोट, पंजाब में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य में विशेष रूप से अपनी कहानियों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जीवन से जुड़े विषयों को सरल एवं प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में मानवता, करुणा, त्याग और सद्भावना का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में हार की जीत विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो सच्ची मानवता और विनम्रता के महत्व को उजागर करती है। आज हम सुदर्शन जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी हार की जीत सुनेंगे। हार की जीत। मां को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से करहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। कड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, कड़क सिंह, क्या हाल है? कड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया,
1: आपकी दया है।
0: कहो, इधर कैसे आ गए?
1: सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है।
0: उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी।
1: कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना,
0: जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है।
1: बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं।
0: बाबा भारती और कड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। कड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़ों देखे थे, परंतु ऐसा भांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा,
1: भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा कड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों का क्या लाभ?
0: कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी।

0: बालकों की सी अधीरता से पूछा,
1: परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या?
0: बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा, उसकी चाल को देखकर कड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा,
1: बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा।
0: बाबा भारती डर गए, अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण कड़क सिंह का बैल लगा रहता, परंतु कहीं मास बीत गए और वह न आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस बै को स्वप्न के बै की नाई मिताई समझने लगे। संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। ससा एक और से आवाज आई,
1: ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना।
0: आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है।
1: बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है?
0: अपाहिज ने हाथ जोड़ कर कहा,
1: बाबा मैं दुखी आ रहा हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं।
0: बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनकी आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू कड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्ला कर बोले,
1: जरा ठहर जाओ।
0: कड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा,
1: बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा,
0: परंतु एक बात सुनते जाओ। कड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा,
1: यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा।
0: परंतु कड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा।
1: बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा।
0: अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना।

0: कड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। कड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द कड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था,
1: कैसे ऊंच विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा।
0: इसकी रखवाली में वे कहीं रात सोए नहीं, भजन भक्ति कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। रात के अंधेरे में कड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिला रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। कड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल की फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहारा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय ना था। कड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकिया देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद कड़क सिंह खड़ा होकर